0: तेरी बुटे माही दा जी मैं अधी अधी वंडी गई। लो जी आखिरी सॉन्ग जरा थ्री नंबर जी
1: जी
0: हाँ जी जी

0: क्या बात है,
1: यू
0: क्या बात
1: सो
0: है
1: मच।
0: बख्शी साहब, क्या बात है जी। बाखूब जी बाखूब, फ्राइडे वाला दिन तुसी रौनक लाइया नाल नाल, बहुत बहुत शुक्रिया ते हैव ए नाइस वीकेंड
1: जी
0: तुहानू भी जी।
1: सेम टू यू,
0: थैंक यू,
1: जिंदे रहो,
0: थैंक यू, सत श्रीकाल जी। लो दोस्तों, इस मुहम्मद जी
1: सत
0: बा खूबसूरत ते प्यारी आवाज ते उन्हां दा अंदाज गीत गाउण दा ते एक्सप्लेन करन दा, गल्लां बातां दे विच वी बाकमाल अपना है जिहड़ी गल रखदे है। ते लो दोस्तों, जांदे जांदे संखेप दे विच सब दोस्तां नूं नाल जोड़ के फिर आग्या लैना इक अद्धे मिंट दे विच ही। सुरजीत भारत जी ने इंडिया तों सति श्री अकाल भेजी है ते इसे तरह ही अपने इकबाल मांगड़ जी सत श्री अकाल, सुरेंद्र कौर माल जी ने सत श्री अकाल, हरविंदर जौल भैन जी ने सत श्री अकाल भेजी है। ते लो मामा भैणा ते धीआं नाल जुड़न लग गईआं ने फिर तों अपने नाल, ते वापसी हो चुकी है सब दी। ते माल भैन जी भी चेते करदे सी जौल भैन जी नूं काफी दिनां तों, ते सारे होर भी अपने भरा जिहड़े ने ओह भी चेते करदे सी। ते इसे तरह ही अगे राजन सैनी साहब लाइक नंबर 5 कहिंदे ने ते सति श्री अकाल जी सारे प्यारिआं नूं समूहिक रूप दे विच। औजला साहब ने सति श्री अकाल फतेह सांझी कीती है ते सतनाम सिंह जाणिया चल बाई जी ने सति श्री अकाल भेजी है। गुरुमान जी दे बहुत सारे सुनेहे ते सति श्री अकाल भेजी है ते सब दोस्तां नूं भी फतेह सांझी करदे आ, नाल कमेंट भी उन्होंने कुछ लिखे है सारिआं दे, मैं जरूर कॉपी पेस्ट कर दांगा ते बाद दे विच मैं जरूर पढ़ांगा। दोस्तो अज समां काफी हो गया, माफी चाहुंदा कल दे लई भी दोस्तां ने सज्जनां ने पुछिआ सी कल आ नहीं सके। हांजी जिवें आपणे गल करके कहने डेनमार्क तो बाई कहिंदे तुसीं उत्थे लिख दित्ता कि टैक्नीकल इशू, पर मेरे निजी कुछ रुझेवें सीगे जी ते उस करके मैं माफी चाहुंदा कल नहीं जुड़ पाया। महीने दे विच इक मीटिंग हुंदी है, वह जरूर अटेंड करनी पैंदी है जॉब दी, ते इस करके महीने दे विच इक छुट्टी जिहड़ी मारनी पैंदी है इस करके। ते जेकर टाइम सिर वापस आ जाइए तो जरूर जरूर तुहाडे नाल जुड़ जाईदा आके वापस। ते गुरीमान जी कहिंदे आ सति श्री अकाल सारे दोस्तां नूं, बहुत सारे सुनेहे ने उहनां दे। ते अपने नरिंदर सिंह बाई जी जुड़े हुए ने, सुखबीर बादल ने क्या कीता कहिंदे जी, ते बाई जी शुक्रिया धन्नवाद निघा स्वागत है। हांजी उन्हां दे उत्ते अटैक होया जी, इह गल 2 दिनां तों चल रही है मीडिया दे विच वी। ते इसे तरह ही औजला साहब, गुरीमान जी ते अपने मुकद्दर जी, राजन सैनी जी ते अपने मान सिंह सैनी साहब हेलसिंकी तों सारे जुड़े हुए ने, सति श्री अकाल भेजदे ने। रजिंदर जीरा जी बाई जी जुड़े हुए ने जीरे तों, सति श्री अकाल भेजदे आ सारे दोस्तां नूं, मित्रां नूं ते दुआबा रेडियो दी टीम नूं। ते मुहम्मद जी जुड़े हुए ने, सति श्री अकाल भेजदे आ। ते इसे तरह जगतार भारत जी ने इंडिया तों सति श्री अकाल भेजी है। ते दोस्तों जे किसी दोस्त का नाम रह गया हो माफी देना मैनू। ते सोमवार नूं मिलन दे वादे दे नाल मुलाकात होगी, कल नूं महफल मित्रां दी लैके समाजीत सिंह शमी जी जिहड़ा जरूर जुड़नगे ते गल्लां बातां उन्हां दे नाल भी 8 बजे भारतीय समय दे अनुसार 2 दिन करनियां तुसीं, ते कुछ गल्लां बातां सुननियां ते कुछ कहणियां ने, ते हर तरह की गल्लबात उस प्रोग्राम च हुंदी है। ते सोमवार नूं तुहाडा मेरा राबता फिर जुड़ेगा ते 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। दोस्तों चंगा लग्या होवे तां दोस्तां तक मित्रां तक जरूर प्रोग्राम सांझा कर दिओ, ते जांदे जांदे उन्हां दोस्तां दा वी धन्नवाद जिन्हां ने प्रोग्रामां नूं सपोर्ट कीता है। हरविंदर जौल भैन जी, जगदेव संधू बाई जी, सिकंदर सिंह औजला, महेश जी, भान सिंह गरेवाल जी, सुरेंद्र कौर माल जी, मान सिंह सैनी साहब ते बलवीर सिंह सैनी साहब दा बहुत बहुत शुक्रिया ते धन्नवाद है। दोस्तों जरूर यूट्यूब नूं जरूर जिहड़ा सबसक्राइब कर लो, कोई पैसा धेला नहीं लगता। दुआबा रेडियो ऑफिशियल पेज अपना फेसबुक के उत्ते भी है, उहदे उत्ते भी फॉलो ज्वाइन कर सकते हो। वट्सअप ग्रुप है, उहदे विच जुड़ सकते हो, प्यारा जिहा नाम लिख के भेज दो, ग्रुप च शामिल कर लो। +358 44976 19 वट स्टूडियो का नंबर है उहदे उत्ते जी। ते कोई वाधू मैसेज नहीं आउंदा, ते टैलीग्राम के उत्ते भी दुआबा रेडियो नूं सर्च कर सकते हो, ते उहदे उत्ते ऑडियो ते वीडियो दे रूप दे विच दोवें रंगां दे विच प्रोग्रामां नूं माण सकदे हो। ते लो दोस्तो वध घट बोल गए, गुस्ताखी माफ, किसी नूं ठेस पहुंचाई होवे तां माफी चाहवांगे। साडा मकसद यह नहीं हुंदा किसी दे विचारां दे नाल मतलब कि सहमति जताउणा हर किसी दे, ते हर किसी दे अपने विचार ने, उन्हां दा वैलकम है जी। ते बहुत बहुत शुक्रिया, विचार करांगे तां कुछ दूर तक गल्लां जाणगियां, ते विचार वटांदरे दे विचों ही कुछ ना कुछ चंगी सेध मिलदी है, इही अपना मकसद है। ते जागरूकता इक दूसरे दे विच आवे, फैलाईए, ते जिहड़े दोस्त जां लोक जिहड़े इन्हां चीजां दे विच गुमराह हुंदे आ उन्हां चीजां तों बच सकन, अपनी जिंदगी अपने तरीके दे नाल वधिया ते सुखामी परिवारां दे विच गुजार सकन, ना कि जेलां दे विच जां कुछ ऐसे कारनामे करके ते ओह जिहड़ियां अपनी जिंदगी ते नाल नाल परिवारक परिवार दे जिहड़े मैंबर ने उन्हां नूं किते ना किते सारी जिंदगी दे लई दुखी करन जां पछतावा होवे, उन्हां चीजां तों गुरेज करन दी इह जिहड़ी है ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਭਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤਨਿੱਗੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।

0: क्या बात है
1: तेरी फोटो वेख वेख होके रहा पर दी तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस कर दी तेरी फोटो वेख वेख होके रहा पर दी तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस कर दी।

0: पढ़ा है मेरी जान, जर से पढ़ा है। तो बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है।
1: बहुत
0: वो फिर
1: बहुत।

0: नानक लाड
1: क्या बात है।
0: ना तुम्हारी कदी जान दे बंदे गंदिया
1: नसला जी। क्या बात है बख्शी जी, बहुत वधिया जी। तुहाडे बोल ते चॉइस जड़ी है हर बार दी तरह बाकमाल हुंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी सांझ दे लई, तुसी शमूलियत कीती नाल जुड़े जी। शुक्रिया, धन्नवाद भाई जी, थैंक यू, सत श्री अकाल, शुक्रिया जी। जी दोस्तों, इस जी अपने नाल बख्शी साहब जुड़े सन मुहम्मद जी, ते गल्लां बातां करके गए ने। बंदे दे अपने कहिंदे उपर निर्भर करदा है ए वरतों एदी किस तरह जड़ा करदे ने। गुरिमान बाई जी लिखदे आ, ते लो फिर दोस्तों विदेशी खबरां दे वल नूं समेटदे आ, आपां गल्लबात करदे आ। ते जिस दे विच 27 थावां दे नाम विवाद जिहड़े ने अरुणाचल दीआं जिहड़ीआं रौला रप्पा पै रिहा अरुणाचल दे विच। चीन नूं भारत दा मोड़वां जवाब आया कि मियां टू चाइना। भारत ने कहा कि कोई भी हकीकत नहीं बदल सकदा है। भारत ने मंगलवार अज अरुणाचल प्रदेश दे विच 27 जड़ियां

सनम तुझे की बिना प्यार मैं करती हूँ, मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे की बिना प्यार मैं करती हूँ।

0: बच्चा होया तो मैं हूँ अपनी सारी इच्छावें इस तो पूरियां करानी है। इट विल
1: जी
0: टेक
1: जी
0: टाइम, वो तुसी आफ्टर 10 और 12 ईयर्स तुसी उस ते कर सकते
1: मतलब लाल किला सीधा नहीं बनना, पहला बुनियादा पुटनियां
0: हो।
1: पैनियां, नीयां रखनियां पैनगियां,
0: बिल्कुल
1: फिर ही ताजमहल या कुतुब मीनार कुछ बनगी। तो
0: बिल्कुल
1: बाकी एक जदों चलो पेरेंट्स ने उन्होंने 9वीं 10वीं 9वीं 8वीं तक कोई भार नहीं पाया कि ठीक है बच्चा जो करता है करन दो, एक गीत गाँव दो, नचता है कुछ करता है, साइंस पढ़ता है क्या बनता है कुछ नहीं, लेकिन फिर वो अगे बच्चा पहुंच जाता है 9वीं 10वीं के बच्चे, वो एक बड़ा ही क्रिटिकल जहा पीरियड बच्चे लिए भी होंगे कि उदों विषयों की चोन बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट शो करता है कि यस मैं मैथ विच बहुत गुड हाँ, जहाँ मैनू कोई लिटरेचर अच्छा लग रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है, उदों वो ट्रेट्स कुछ कुछ उभरने शुरू हो जाते हैं कि
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अगे जाके की करने वाला है। उस वे बच्चा जड़ा है ते टीचर है बच्चा है अध्यापक, वो एक तरह चौरस्ते च खड़े होंगे कि हुण आपां ने जे हुण नहीं सोचा फिर कुछ नहीं हो सकता,
0: बिल्कुल
1: ये पूरी जिंदगी का सवाल ही है। ये दो विशेष तौर पर क्लासा नौवीं दसवीं इतने बच्चे की ध्यान रखना चाहिए बच्चे के लैवल से, आप जो सोचिए
0: बच्चे नूं इस स्टेज के उत्ते सपोर्ट ते मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होंगी है। कि कुछ गल्लां इस तरह की होंगी है, वो चेंजेस शरीर च भी चेंजेस आ रहे होंगे, वो माइंड भी वो
1: हाँ
0: शेप अप कर रहा होंगे कि मैं अगे की करना। इस वेले जे उन्होंने कम्युनिकेशन गैप आ जाए अपने पेरेंट्स नाल या इनफैक्ट कई बार टीचर्स नाल, तां वो दे लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। इस करके पेरेंट्स नूं टीचर्स नूं चाहिए बच्चों नाल उस वेले अपना कम्युनिकेशन जिहड़ा वो चंगी तरह बना के रखन, उन्होंने सपोर्ट देन, उन्होंने मोटिवेशन देन। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिना
1: जी जी जी
0: कि
1: जी
0: जो असं भी बच्चे होंगे सी, मैं मेरे भरा मेरे दोस्त, असं नॉर्मली ये गल सुनते होंगे कि टीचर्स या पेरेंट्स वेले कहते हैं कि ये तो जी क्रिटिकल स्टेज है 8वीं 9वीं 10वीं
1: जी जी
0: की,
1: जी
0: ये 2 3 साल जो बोर्ड की क्लासा पार कर लोगे,
1: बिल्कुल
0: हूँ मेहनत कर लोगे, सारी उम्र तुम ऐश करोगे।
1: ये
0: जे
1: तो
0: हूँ तुम
1: गल
0: ऐश कर ली 2 3 साल दे, सारी उम्र तुम
1: है
0: मतलब दिहाड़ी करनी
1: फिर
0: पैनी
1: दिहाड़ी में
0: है,
1: पछतावा ही
0: फिर
1: रहेगा।
0: पछतावा रहना है।
1: हाँ जी हाँ
0: असी
1: जी
0: सोचते हैं कि भाई बड़ी मतलब एक वधिया गल दसी है, असं 2 साल मेहनत कर लेंगे, 9वीं 10वीं चलो चंगे नंबर आ जाते हैं,
1: बिल्कुल सही
0: फिर
1: गल
0: जो 11वीं चाहते हैं टीचर बदल जाते हैं, पेरेंट्स तो चलो उही गल रिपीट करते रहते हैं कि एक 11वीं 12वीं होर तुम मेहनत कर लो,
1: है। हाँ
0: फिर
1: जी हाँ
0: सारी
1: जी
0: उम्र थोड़े 60 साल जड़े
1: बिल्कुल
0: ऐश दे निकलेंगे। असं फिर सोच के मेहनत कर लेते हैं कि चलो 2 साल होर कर लेंगे
1: दो
0: मेहनत,
1: ऐड हो गए चलो कोई
0: दो
1: गल
0: हो
1: नहीं।
0: रहे, कोई बच्चा कर लेना मेहनत कर लेना, कोई
1: हाँ
0: डॉक्टर
1: जी
0: बन
1: हाँ जी
0: जाता है 12वीं तो, इंजीनियरिंग लाइन च लैंदा, कोई सर्विसेज वगैरह कितने चला जाता है।
1: हाँ जी हाँ
0: उस
1: जी
0: तो बाद फिर एक बार डॉक्टर बन ही गया, फिर तो मेहनत करनी
1: फिर तो
0: पैनी।
1: गड्डी ली ते आ गई है,
0: फिर
1: फिर
0: तो
1: तो
0: आ
1: जाना
0: गया।
1: ही
0: उस तो बाद मतलब कहने की गल है कि किसी भी तरह नाल, इस तरह की गल्ला नाल या कोई होर किसी मोटिवेशन नाल, जे बच्चे नु आपा उस वेले सपोर्ट दे दिए, उन्हों आपा किसी तरह रीइंफोर्समेंट दे दिए, तां उहदा सारा जिहड़ा करियर है उस वेले शेप अप हो सकता है। तो उस वेले पेरेंट्स नु टीचर्स नु ये बहुत सोचने की लोड़ है कि किस तरह अपने बच्चों नु अपने विद्यार्थियों नु किस तरह इस चंगी सपोर्ट दे सकते।
1: बिल्कुल सही जी। ये तो यही एक तरह का कह लो कि क्रॉस रोड्स ने,
0: बिल्कुल
1: इन्हों के उत्ते ही सही ट्रैक पकड़न की लोड़ होंगी है, तो बड़ी वधिया गल तुसी कीती। वैसे तुसी डॉक्टर भी हो, मैं जे निजी सवाल पूछा कि तुसी डॉक्टर हो MBBS हो फिर तुसी ट्रैक बदलते हो फिर तुसी सिविल सर्विस चाहते हो, ये किवें डॉक्टर बनने का ट्रैक किवें सी ते उस तो बाद जिहड़ा टर्न लिया वो किवें जिंदगी च आया?
0: डॉक्टर बनन दी जेड़ा सुपना सीगा, वो एक्चुअली जिहड़ी मैं गल कह रहा सी मेरे पेरेंट्स नहीं सी, मेरा सुपना नहीं सीगा। जस्ट दैट कि उन्होंने ग्रूम इस तरह का किया कि पढ़ाई से नॉर्मली अपना ठीक रहे, अपनी क्लास च पीछे वाली कतार च ना हो, अगली कतार च रहे। 7वीं 8वीं तक यहीं चलता रहा, खेडा च भी ठीक सीगा,
1: हाँ जी
0: खेड
1: हाँ
0: खूड भी
1: जी
0: ठीक लेंदे सी।
1: ठीक है
0: जिहड़ी
1: जी
0: गल मैं आखी कि 8वीं जदों एक क्रॉस पॉइंट आया कि बोर्ड के पेपरों को बड़ा हवा बनाता, साढ़े टाइम से 8वीं बोर्ड की होंगी सी,
1: 8वीं बोर्ड दी। हाँ जी हाँ जी
0: कहते जी बोर्ड का पेपर है तो ये तो चंगा तुम्हें करना ही करना, इस ज़्यादा
1: ये
0: कोई वो है ही नहीं, यदा हल ही नहीं है।
1: हाँ
0: तो
1: जी हाँ जी
0: 8वीं से मेहनत की उदों ही गल्ला कही गया कि जी 8वीं पास कर लो फिर तुम लैके जावे कितने, असं भी नाल
1: हाँ
0: करा,
1: वाह जी
0: हो
1: वाह
0: गई पास हो गई 8वीं संभव।
1: ठीक है
0: 9वीं अच्छा एक आदत शुरू तो पवाई कि पेपर रीडिंग नहीं, न्यूज़ पेपर तुम शुरू तो पढ़ते रहो, बुक्स वगैरह जीके की बुक्स है या होर कोई कंप्लीट
1: अच्छा
0: लिटरेचर की
1: अच्छा
0: बुक्स
1: जी
0: है। ये हमेशा आदत साढ़े घर से कि मंथली एक मैगजीन साढ़े को आती सी, पेपर साढ़े को 3 लैंग्वेज के आते
1: ये
0: आते
1: प्लस
0: सी।
1: पॉइंट्स
0: ये प्लस पॉइंट,
1: बिल्कुल
0: ये ग्रूमिंग की जी मैं गल आख रहा
1: हाँ जी हाँ
0: था
1: जी
0: कि
1: ठीक
0: तिने
1: है
0: तिने लैंग्वेज के पेपर साढ़े घर से आते,
1: जी जी
0: हिंदी
1: ठीक है
0: पंजाबी इंग्लिश तीन पेपर शुरू तो ही बचपन तो ही पढ़ते। ਤੇ ਫਿਰ 9th 10th ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਇਓ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਇਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ

सफर आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज़ ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये

लगती सही, कहा दास को मत घबराना, हंसते गाते दिन बिताना। कहा दास को मत घबराना, हंसते गाते दिन बिताना।

हाथ है आया आज जो वीरा समान एवें गवाई। हाथ है आया आज जो वीरा समान एवें गवाई। जोर दा हल्ला बोल के मित्रा संघर्ष अगे वधाई। जोर दा हल्ला बोल के मित्रा संघर्ष नू अगे वधाई। इकट्ठे हो

अति रात तक करना आंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अच हंजू केरे रोवे, अच हंजू केरे रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो। किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्तरो लियाना पैना। सच कहंदे ने सियाणे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाणे जे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाणे भुखे रोणगे न्याणे, सच कहंदे ने सियाणे भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी। तेरे केड़ा छत तो आने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने। अणख आबरू खोण नी देनी, अणख आबरू खोण नी देनी, धरत मोहताज की।

0: बिल्कुल
1: तुहानू सुन के किदां लग रहा है,
0: जी
1: तुहानू आपे ही चल पता चल जाएगा कि ये किन्ना क होना चाहिए।
0: जी जी
1: ठीक है।
0: बिल्कुल
1: दूसरा है जिदे विच असी इहनू कहिंदे आ अथॉरिटेटिव स्टाइल। ये पहले जिदी मैं गल कीती अथॉरिटेरियन है,
0: जी
1: सेकंड है अथॉरिटेटिव,
0: जी जी
1: जिहड़ा काफी हद तक बैलेंस्ड पेरेंटिंग है,
0: जी जी जी
1: जिस दे विच असी बच्चियां नाल गलबात करते हैं, असी उन्हां दी गल सुनते हैं, असी
0: जी
1: अपना अपनी डिस्कशन करते हैं, असी अपनी गल उन्हां दे सामने रखते हैं,
0: जी जी
1: असी पॉजिटिव नैगेटिव दे बारे गल करते हैं।
0: जी जी
1: कदे बच्चे तो असी कन्विंस हो जाने हैं, कदे बच्चा साढ़े तो हो
0: साढ़े तो हो
1: जाता
0: जाता है। जी जी जी
1: और इनू मेरी नज़र विच पॉजिटिव पेरेंटिंग है।
0: जी जी टू वे कम्युनिकेशन
1: टू वे कम्युनिकेशन है।
0: है
1: बच्चे नू कदे भी ये नहीं लगता कि मेरे तो सुनते ही नहीं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना।
0: जी
1: कई बार ऐसा भी होता है कि तुसी अपनी ही गल मनवा लैंदे हो पर बच्चे नू एहसास नहीं होता कि मेरे नाल जबरदस्ती हुई है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तुहाडा कन्विंस करन दा तरीका इस तरह का होंगे।
0: जी जी जी
1: दैट इज अथॉरिटेटिव। ठीक
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: एक है थर्ड जिसके बारे में गल करना चाहनी है, वह है परमिसिव पेरेंटिंग।
0: परमिसिव
1: परमिसिव परमिसिव दे विच है कि तुसी छूट देती है बच्चे नू,
0: खुला ही छोड़ देता है कि जो मर्जी करे।
1: तुसी उस तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत घटा ली है।
0: जी
1: कोई फर्क नहीं पैंदा तू जो मर्जी कर।
0: जी जी जी
1: ठीक है। हर एक चीज उन्हों तुसी मुहैया कराते हो, ओदियां डिमांड्स जड़ियां है तुसी ये नहीं देखते कि वह जेन्युइन है या नहीं, वह पूरियां करना तुहानू लगता जरूरी है
0: जी
1: और तुसी वो बोलदा है और पूरियां कर दे।
0: जी जी
1: इस तरह की पेरेंटिंग दे विच चाइल्ड स्पॉयल होंदा है
0: जी
1: जो
0: जी
1: आम तौर पर देखा जाता है।
0: जी जी
1: क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं समझाई जाती कि चीज़ा किस तरह आदि हैं, किस कितनी डिमांड होनी चाहिए है।
0: जो उन्हें मुंह कटे हैं वो
1: उन्हें ये नहीं लगता कि जरूरत के हिसाब न चीज होंगी है, उन्हें लगता है जो दिल करे वो होंगी है।
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल
1: वो इस तरह सीखता है। इस तरह के बच्चे फिर अगे जाके कम्युलेटिव बनते हैं, चीजा कठिया कर लेनी है चाहे लोड़ होवे चाहे ना,
0: बस उन्होंने जमा करी जाना है सब कुछ।
1: हाँ जी ठीक है।
0: बिल्कुल।
1: फिर है अनइनवॉल्वड पेरेंटिंग। अनइनवॉल्वड जिथे पेरेंट्स इनवॉल्वड ही नहीं है,
0: कुछ भी नहीं कर रहे हो, ते उन्होंने
1: फिजिकल प्रेजेंस नहीं है।
0: जी जी
1: जरूरतां सारियां पूरियां हो रही हैं बच्चे दियां।
0: जी जी जी बिल्कुल पर वो उत्थे है नहीं,
1: उत्थे नहीं है ना, वो टाइम दे रहे हैं, जे वो हैगे भी है तो वो कुछ होर कर रहे हैं।
0: जी जी
1: बच्चे लई नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो अपनिया कुछ एक्टिविटीज दे विच इन्ने बिजी है या उन्हें ये लगता ही नहीं कि यह जरूरी है, उन्होंने लगता है जरूरत पूरिया करनिया ही पेरेंटिंग है।
0: जी,
1: और वो सारिया जरूरत पूरिया कर रहे हैं और बच्चे नू भी एक टाइम तो बाद लगन लग जाता है कि माँ बाप जड़े है वो जरूरत पूरिया करन दा सोर्स है,
0: उन्हों का होर कोई रोल नहीं,
1: वो जुड़ाव नहीं आता, एक कनैक्ट जो असं कहने भावनात्मक जुड़ाव
0: वो नहीं बनता,
1: वो नहीं बनता।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी
1: उन्हां लई इन्हां चीज़ां दी इंपोर्टेंस नहीं होंदी कि इकट्ठे बह के डिनर करना, बच्चे की गल सुनना, अज स्कूल च की होया, उहदा होमवर्क देखना, इस चीज़ की कोई इंपोर्टेंस नहीं। यह है तो बेसिकली ये चार स्टाइल है।
0: जी जी जी
1: और मेनू लगता है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है जिदे विच टू वे डिस्कशन है,
0: दोनों दी गल हो रही है।
1: हाँ जी
0: दोनों तेरा
1: उस दे, हाँ जी उथे कनेक्ट जुड़दा है, बच्चे जुड़दे है,
0: जी जी
1: वो वड्डे होके भी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करदे है।
0: जी जी
1: बजाय के बाहर कोई लभन दे कि जिदे नाल मैं दिल दी गल करा, पेरेंट्स उन्हां दे दोस्त बन जांदे आ टाइम नाल।
0: जी जी
1: मेरा पर्सनल व्यू है कि ये ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी क्योंकि डायलॉग तो होना चाहिए है दोवां दे विच, जे यही विच माइनस हो गया तो वो गैप बढ़ता जाएगा।
1: बिल्कुल
0: तो जी वैसे सब तो ज़्यादा कि पॉपुलर है आम जी जनता जी है वो इनवॉल्व होंगी है जिदे विच सब तो जी पॉपुलर
1: आम लोग करते हैं।
0: जी जी जी
1: जो मेरा एक्सपीरियंस है साड़ी जनरेशन दे जो असी जदों बच्चे सीगे,
0: जी जी
1: जदों भी मैं किसी नाल गल करदी हां बहुत घट लोग है जिहड़े कहिंदे हैगे कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग चो पले है, अथॉरिटेरियन स्टाइल ही रहा है। और अज तक भी पता नहीं शायद इंडिया का यह रहा है कि ओबीडियंस है ना जिहड़ी वो इहदे विच ही लभी जांदी है कि जो असी कहिंदे आ वो इह करदा है, अपने हालातां तो सिखिया ना,
0: पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा
1: है, पीढ़ी चल रहा है।
0: जी जी।
1: बच्चा उस तो अलग भी सोच सकदा।
0: जी जी
1: बच्चे दा एक्सपोजर कुछ होर है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है ना। पर उथे क्योंकि डायलॉग नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं है, रीजनिंग नहीं है, तो उसनु वो मनन ले मजबूर है, वो
0: हुकम जिहड़ा है वो अटल है।
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। और इहदे तां फिर जिहड़ा बच्चा है इहदे विच मैनूं लगदा अगे जाके वो भी अगे इसे तरह ही अपनी अगली पीढ़ी दे विच वो सारा ट्रांसफर हुंदा सारा कुछ उसे तरह ही चलता रहिंदा है।
1: ये डिपेंड करेगा देखो जिहड़े बच्चे नूं हर पले लगदा रहेगा कि यह गलत हो रहा है